0: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
0: हाँ जी शुक्रिया।
1: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिश को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर्स को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज रखें। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफ एम की जानिब से। मेहरबानी तो आवाज एफ एम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ, बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत है, मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है।
0: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रीसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने एक फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी बखैर।
0: थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय,
1: आई लव यू ऑल।
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
6: Radio, the medium that's now large.
7: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
8: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sailaway Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
9: Hi everyone, this is Tarab and you're listening to Awaz FM. To listen to my songs, please go to @TarabHKhan on Instagram or Tarab Khan on YouTube and check it out. Thanks.

0: उठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Ours FM.

0: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज खैरियों की क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए खैरियों की गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज खैरियों की क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज FM पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
7: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
8: ਪੁੱਤਰ, ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਰ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਗਾ ਨਹੀਂ ਰੈਸਪੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਣਾ ਵਾਲੀ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਦੋਈ ਦੱਸਣੇ ਹੋ, ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਲੱਭਣੀ ਬਾਤ ਹੋਇਆ ਸਮੇਤ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕੁਸਕੀ ਪਖਾਣੇ

0: Hey, Susie Perry here. Things I love. Cars, tick. Gadgets for cars, tick. Digital radio, tick. With more digital radios and adapters available than ever before, there's never been a better time to convert your car. Any car can be converted, and if you need help, there are now registered digital radio tick mark installers at independent retailers and Halfords.
1: To find your nearest registered digital radio tick mark installer, visit getdigitalradio.com/installers.
0: If you love radio, go digital.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पूरे इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़

हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे तो

0: Yang Yingru of China.
1: Friend of the show.
0: Friend of the show. She's one of the 900 that listens. Big shout out to Yang.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज

0: तुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Ours FM.

0: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू

0: Your number one radio station. Play more music. We are your number one favorite station. Playing more music.
1: Oh, yeah.
0: We are your number one radio station. We only play the hits.
2: Ours FM.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
5: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
6: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
7: Radio, the medium that's now large.
8: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
9: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
10: ये ज़ुल्फ़ें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये ज़ुल्फ़ें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़कने यूं ही बढ़ा रखी हैं, सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा, कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं मैकदों में वीरानी सी छा गई है मैकदों में वीरानी सी छा गई है यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है नज़रों के प्यालों से छलकते जाम ये नज़रों के प्यालों से छलकते जाम ये हर सू मैकशों की बाढ़ लगा रखी है हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है शुक्रिया
11: इस दुनिया में कौन सुनेगा दुख

देख ले तू नजर पलट नी बल्ले नी बच मोड़ तो बल्ले नी बच मोड़ तो मैं सके तेरी तोड़ तो बल्ले नी बच मोड़ तो।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश कर रहा हूँ 1954 की मूवी मिर्जा गालिब और बोल है दिले नादान। आइए सुनते हैं ये प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत।

1949 की मूवी 1954 की मूवी मिर्ज़ा गालिब से आपने ये गीत सुना दिले नादान। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत मेरे साथ यानी अली के साथ, और आपका मेरा साथ रहेगा अगले दो घंटों के लिए। और इस वक्त अगर आप अपना कुछ मनपसंद गीत सुनना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 02381 9800 72, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786 9144 0। और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत 1940 से लेकर 1990s तक। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत मुकेश की आवाज़ से। मूवी का नाम है अंदाज 1949, और इस मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत जूम जूम के नाचो गाओ। आइए सुनते हैं प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम।

1949 की मूवी अंदाज से ये गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। और आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहाँ की मैं आपका होस्ट अली आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी गीत 1940 से लेकर 1990s तक। और इस प्रोग्राम में अगर आपने अपने कुछ मनपसंद गीत आपने सुना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0238198072। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914400। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, मूवी का नाम है आबे हयात और यह थी 1955 की मूवी। हिम्मत कुमार और सरदार मलिक की आवाज़ से ये गीत आपके लिए पेश करता हूँ, मैं गरीबों का दिल हूँ। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पर।

1955 की मूवी अब हयात से ये गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा और ये थी हेमंत कुमार और सिद्धार्थ मलिक की आवाज़ से ये गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया भर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत मेरे साथ यानी कि अली के साथ, और आपका मेरा साथ रहेगा अगले दो घंटों के लिए। और इस वक्त अगर आप अपने कुछ मनपसंद गीत सुनना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914400। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और अब चलते हैं 1962 की तरफ और मूवी का नाम है हरियाली और रास्ता। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये बहुत ही प्यारा सा गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ से, इब्तिहाए इश्क में सारी रात जागे। आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

मूवी हरियाली और रास्ता से ये गीत आपने सुना 1962 की मूवी और आवाज़ थी लता मंगेशकर और मुकेश। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत। आप अगर अपना कुछ मनपसंद गीत सुनना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914440। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ और ये गीत हमें लेके चलेगा ब्रेक की तरफ और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ मूवी फागन। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत 1958 की रिलीज मूवी फागन से। यह है आवाज़ एक परदेसी मेरा दिल ले गया ये गीत के बोल। आइए सुनते हैं और फिर मिलते हैं इस गीत के उस पार।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: Lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom. The bottom of the river.
3: Hello, you beautiful people. My name's Sunny. I host The Devil Rises Show every Saturday from 2 to 4 only on Awaaz FM 99.8. Remember to tune in. Don't miss it.
4: Sahara Drums, from Kingston to the Nile. Join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa blended with music of the Caribbean, where heritage speaks volumes in the form of music, combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive every Sunday at 1 p.m. only on Awaaz 99.8 FM. See you then.
5: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम. मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोके क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है. इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोके गीत पेश किए जाते हैं. अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें. नंबर है 07784691440. रिमेम्बर, आवाज कैरियोके क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर. लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में. स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ.
7: Welcome back to Awaaz FM Community Radio. आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk पर. मैं हूं आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहां के आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक. उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072. इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914440. भाई, चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ मूवी चाचा जिंदाबाद. जी हाँ, चाचा जिंदाबाद मूवी 1959 की रिलीज, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, बड़ी चीज़ है प्यार मोहब्बत. आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार.

जी हाँ, बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत। मूवी का नाम था चाचा जिंदाबाद, 1959 की रिलीज। और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ के आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नक में 1940 से लेकर 1990s तक। इस वक्त अगर आपका कुछ मनपसंद गीत आप सुनना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए 07786914400। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त चलते हैं हम 1960 की तरफ, और 1960 की तरफ हम चलते हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब, और गीत है चौदहवीं का चांद हो, और मूवी का नाम है चौदहवीं का चांद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पर।

तुम्ही का चांद और मूवी का नाम था चौदहवीं का चांद 1960 की रिलीज और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी, इनका टाइटल सॉन्ग चौदहवीं का चांद हो। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत मेरे साथ यानी कैली के साथ, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हिंदुस्तानी गीत 1940 से लेकर 1990s तक। और अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381 9800 72। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ और थोड़ा सा बढ़ते हैं 1961 की तरफ। और इस 1961 में आपके लिए पेश करता हूँ मूवी छोटे नवाब। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, इलाही तू सुन ले हमारी दुआ। आइए सुनते हैं ये प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज से ये गीत आपने सुना। मूवी का नाम था छोटे नवाब, 1961 की रिलीज। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहाँ के आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपको सुनाए आपको पसंद आए होंगे। और इसी तरह आपको बताता चलूँ कि हमारा दूसरा प्रोग्राम सुनहरी यादें का होता है इतवार वाले दिन, यानी कि संडे वाले दिन, और ये वो होता है सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ पाकिस्तानी प्यारे से नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। और जैसे कि आज आप हमारा साथ दे रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ उस प्रोग्राम में भी देंगे। आइए चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ अगला गीत, यह है 1963 की मूवी ताजमहल, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा गीत, जो वादा किया वो निभाना होगा। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और फिर मिलते हैं इस गीत के उस पार।

बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, मूवी ताजमहल और 1963 की रिलीज, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले गीत की तरफ और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ मुकेश की आवाज़, 1970 मेरा नाम जोकर, यही मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, और ये गीत हमें लेके चलेगा ब्रेक की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह अगर आपको कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914400। चलते हैं अगले गीत की तरफ, मूवी का नाम है मेरा नाम जोकर, 1970 की रिलीज, आवाज़ है मुकेश और ये गीत का बोल है जाने कहाँ गए वो दिन। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awaazfm.co.uk.
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
5: बैक टू आवाज बैंक मीट रेडियो आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk पर मैं हूं आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा अगले एक घंटे के लिए उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी पियानिस्ट से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक आइए चलते हैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगले गीत की तरफ चलते हैं इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ 1966 की मूवी सूरज और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ बहारो फूल बरसाओ

बहारों फूल बरसाओ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से ये गीत आपने सुना। मूवी का नाम था सूरज, 1966 की रिलीज। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। इस प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा लेना चाहें, अपना मनपसंद कुछ गीत सुनना चाहें, तो आप हम मुझे कॉल कर सकते हैं 02381-980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914400। आइए प्यार का कुछ गीतें जारी रखते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ मूवी अप्रैल फूल 1964 की रिलीज, और चलते हैं इस गीत की तरफ। समन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आएगा, और मिलते हैं इस गीत के उस पर।

1964 की मूवी अप्रैल फूल से ये गीत लिया था सुमन कुल्यानपुर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ से, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह अगर आपको कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381-9800-72। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914440। नहीं चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ 1966 की मूवी दो बदन। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ आशा भोसले की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत, जब चली ठंडी हवा। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

1966 की मूवी दो बदन से ये गीत हमने लिया था। आवाज थी आयशा भोसले और बोल थे जब चली ठंडी हवा। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। इस प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा लेना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 023-81-98-0072। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ और चलते हैं अब आवाज़ मुकेश और मुकेश की आवाज़ से ये अगला गीत आपके लिए पेश करता हूँ। मूवी जी चाहता है 1964 की रिलीज, जी हाँ 1964 की रिलीज़, मुकेश की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत हम छोड़ चले हैं महफिल को। आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

1964 की मूवी जी चाहता है से ये गीत हमने लिया। आवाज़ थी मुकेश, हम छोड़ चले हैं महफिल को। आवाज़ है, आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहां की आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 07784691440। चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत। 1962 की मूवी, जी हाँ 1962 की मूवी सन ऑफ इंडिया, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढता है।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज एफएम के साथ

0: upon, rewind, repeat. One wild ride. Retro Rickshaw, every Sunday between 2 and 4 p.m.
1: Domestic abuse affects millions across the UK, often hidden behind closed doors. Listen to the story of Aisha, a woman who looked fine to the world until the cracks began to show. Behind Closed Doors, a radio drama about domestic violence, every Thursday at 5 p.m. Only on Awaz Radio 99.8 FM.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
5: Welcome back to Awaz FM Community Radio. Aapki awaz aapke shehar mein 99.8 FM aur duniya par aap hame sun rahe hain awazfm.co.uk par. इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहां कि आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक, और उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। यही चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ 1971 की मूवी पाकीज़ा। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। आइए सुनते हैं प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

लता मंगेशकर की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत आपने सुना। मूवी का नाम था पाकिजा, 1971 की रिलीज। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एंकमेंट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया भर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। यही चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त एक बार फिर आपके लिए प्यारा सा नगमा लेकर आया हूँ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ से। ये प्यारा सा गीत 1972 की मूवी ये गुलिस्तान हमारा, इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, गोरी गोरी गाँव की गोरी रे, किस लिए बन रही है दोरी रे।

गोरी गोरी गाँव की गोरी रे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। अब सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एंकमेंट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ amco.uk पर। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1977 की तरफ, और इस वक्त 1977 की मूवी अमर अकबर एंथनी से रुकते हैं, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, शेर दीवाले साईं बाबा। और ये गीत सुनते हैं और मिलते हैं इस गीत के उस पार, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ एंकमेंट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

1977 की मूवी आमर अकबर एंथनी से ये गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एंकमेंट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। अभी चलते हैं अब अगले गीत की तरफ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं 1981 की तरफ और मूवी का नाम है याराना। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, बोले ओ बोले तू रूठा दिल टूटा।

बोले ओ बोले तू रूठा दिल टूटा, किशोर कुमार की आवाज़ से ये गीत आपने सुना 1981 की मूवी याराना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। समय प्रोग्राम का वक्त पूरा होता जा रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और जाते जाते आपके लिए पेश करता हूँ ये आखिरी गीत, ये है किशोर कुमार मानते और आदि बर्मन की मूवी फ्रॉम द मूवी शोले, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, लुक आउट योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड सी यू अगेन सून।

0: two straight hours of sports nerds talking about every kind of sport imaginable. Start again.
1: Hi, I'm Coxy.
2: Hi, I'm Notty.
1: We are
2: the Behind the Mic Show.
1: Tune in every Monday
2: from 1 till 3 for our sporting waffle and absolute nonsense.
3: We're going to be talking about sport
1: on Awaz 99.8 FM.
4: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर-ओ-नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर-ओ-नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर उसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।
5: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.

0: Hello friends, my name is Rahi Baines and I've come to remind you to listen to my radio show Kinare Kinare every Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. As usual, there is loads of music, masti and manoranjan for you. The program includes chutkle, funny poems and skits, Bollywood biographies, birthday bash whereby I mention the names of all my Facebook friends who had their birthdays in the last 7 days, Zara Hatke, which is off the beaten track pieces of musical items, and a lot more. So see you next Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. here on Awaaz FM.
1: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेरो नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेरो नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर उसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

0: नवंबर को मशहूर गायिका गीता दत्त जी की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में आज आपको मैं गीता जी के गाए हुए गीत सुनाने वाला।
1: आज का ये विशेष एक फनकार कार्यक्रम समर्पित है महान गायिका गीता दत्त जी को, जिनका शादी के पहले नाम था गीता रॉय चौधरी। फिल्मों के शुरुआती दौर में उनको गीता रॉय के नाम से ही जाना जाता था। गीता जी मेरी पसंदीदा गायिकाओं में से एक हैं, और हो भी क्यों ना, उनका हुनर ही कुछ ऐसा था। गीता दत्त जी को कैसे हनुमान प्रसाद जी ने खोजा था, इसकी कहानी सभी को मालूम है। उनके घर के पास से गुजरते हुए एक टीनेजर गीता जी की आवाज उन्हें तुरंत भा गई, और इसी के बाद 1946 की फिल्म भक्त प्रहलाद में उन्होंने गीता दत्त जी से गवाया था। अन्य संगीतकारों को भी जब उनकी आवाज के बारे में पता चला तो उन्होंने भी मंत्रमुग्ध हो उनसे गीत गवाने शुरू कर दिए। गीता दत्त जी ने अपने करियर के पहले 2 साल में ही कम से कम 175 गीत गाए होंगे, जो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा है। इसी से आप समझ लीजिए कि गीता जी को उस दौर में कितना पसंद किया गया था। कुछ साल पहले तक मैं समझता था कि गीता जी के गाए गीतों संग पहली प्रदर्शित फिल्म ये भक्त प्रहलाद ही थी, लेकिन बोरीवली के रहने वाले रिकॉर्ड संग्रहकर्ता श्री जयरामन ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है। कुछ पहले रिलीज हो गई फिल्में भी हैं जिनमें गीता दत्त जी की आवाज़ है पर उन पर गीता दत्त जी का नाम नहीं है। उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया 1945 की फिल्म आधार का, जिसमें गीता दत्त जी के गीत मौजूद हैं। उन्हीं में से एक गीत मैं आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। गीतकोश कहती है कि इस गीत को शहजादी ने गाया है, लेकिन सुनने पर सच्चाई पता लगती है। जयरामन जी ने बताया कि वास्तव में इस गीत में एक नहीं दो आवाजें हैं, एक मुश्किल से 14-15 साल की गीता जी और दूसरी आवाज फिल्म के संगीतकार एस एन त्रिपाठी जी की खुद की। सुनने पर भी यही प्रतीत होता है। जान पड़ता है कि उस दौर के प्रचलन के चलते इस फिल्म के रिकॉर्डों पर कलाकारों के नाम शहजादी, उषा, अब्दुल, उमाकांत इत्यादि दिए गए होंगे। आइए हम सुने इस बेहद दुर्लभ गीत को, जिसके बोल लिखे हैं M.A. राजी ने।

0: ये बैलून सा खाली पीली मेरी चरसी की देखो बहार, मेरी चरसी की देखो बहार। मैं तो देता हूँ सबको उधार, मैं तो देता हूँ सबको उधार।
1: बड़ा चलाइए बाद बनाने
0: आई बड़ी ये रंग जमाने,
1: मैं तो मारूंगी।

इस समय जब गीता जी के बारे में संगीतकारों को पता चलने लगा तो फिल्मिस्तान स्टूडियो एक नई फिल्म बना रहा था। संगीतकार सचिन देव बर्मन ने स्टूडियो की दो अन्य फिल्मों शिकारी व आठ दिन में काम कर लिया था और उन्हें स्टूडियो ने यह तीसरी फिल्म दी थी जिसका नाम था दो भाई। सचिन दा को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि कामिनी कौशल, उल्हास, राजन अक्सर व पारो अभिनीत फिल्म के पूरे छः गीत उन्होंने गीता जी को दे दिए। पहली दो फिल्मों से कहीं ज्यादा इस फिल्मों के गीतों ने पूरे भारत में धूम मचा दी। आइए सुने गीता जी की आवाज में वह गीत जो सब और गूंज रहा था और जिसे लिखा था एक नए उभरते गीतकार राजा मेहदी अली खान ने।

इस गीत के साथ गीता जी का सुंदर सपना पीत नहीं शुरू हो रहा था। उस दौर के सभी प्रमुख संगीतकारों ने गीता जी के साथ काम किया था। लता जी का हाल ही में उनके 51वें जन्मदिन पर सुभाष के झा ने साक्षात्कार लिया तो सुभाष जी ने कहा कि आपके जैसा ना पहले कोई आया ना फिर आएगा। लता जी ने तबाक से कहा, ऐसा नहीं है, मेरे से पहले नूर जहां, शमशाद बेगम और गीता थे। सब जानते हैं कि लता जी को बड़ा ब्रेक मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्म मजबूर में दिया था। यदि मास्टर साहब किसी से गवा लें तो ये उनके करियर के लिए बड़ा बूस्ट होता था। मास्टर साहब गीता जी से भी बड़ा प्रभावित हुए थे और मजबूर ही नहीं, पहले बैरम खां के अलावा पद्मिनी, पुतली और शहीद जैसी फिल्मों में भी उन्होंने गीता जी से गवाया था। कुछ लोग बताते हैं कि 1950 के आसपास मास्टर साहब पाकिस्तान से लौटे थे और गीता जी से कुछ और गीत भी उन्होंने गवाए थे। राम जाने वे गीत कहाँ गए। जहाँ तक फिल्म मजबूर की बात है, गीता जी से उन्होंने 3 गीत गवाए थे जिसमें से 2 लता जी के साथ 2 गाने थे। आइए उन्हीं में से एक सुने जिसके बोल थे नाजिम पानीपति के।

गीता जी ने अपने करियर में 1350 के करीब गाने गाए होंगे। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, आप सब रसिक श्रोता हैं और वह सब बातें आपको ज़रूर मालूम होंगी। इस कार्यक्रम में मैं कुछ कम चर्चित पहलुओं पर जोर देने की कोशिश करूंगा। 1948 के आसपास मद्रास के प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियोज ने हिंदी फिल्मों में भी कार्य शुरू कर दिए थे। जेमिनी स्टूडियोज की चंद्रलेखा के लिए गीता जी ने नाचे घोड़ा नाचे गीत गाया था और अगले कुछ सालों तक वे शमशाद बेगम के साथ इन स्टूडियोज की पसंदीदा गायिका बन गई थीं। निशान, मंगला, एक था राजा, मिस्टर संपत, बहार जैसी ही ऐसी कुछ फिल्मों के नाम मुझे याद पड़ते हैं जो मद्रास में बनी थी। शमशाद जी से मैंने इस बारे में बातचीत की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वे कुछ दिन के लिए मद्रास जाती, दिन रात रिहर्सल व रिकॉर्डिंग होती जिसके बाद वे वापस लौट आती। ऐसी ही एक फिल्म थी 1951 की फिल्म संसार, जिसे जेमिनी स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया था, जिसमें अभिनेत्री रेखा की अभिनेत्री माँ पुष्पावली जी ने अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक दो गाना हम सुनेंगे जिसमें गीता दत्त जी के साथ जीएम दुरानी जी हैं। रफी साहब के बाद गीता जी ने शायद दुरानी साहब के साथ ही सबसे ज्यादा दो गाने गाए होंगे पुरुष गायकों में। यह गीत आगा और मोहना पर फिल्माया गया था। इस गीत के बोल लिखे थे पंडित इंद्र ने, जो मद्रास की फिल्मों के लिए काफी लिखते थे, और संगीत दिया था M.D. पार्थसारथी, ई शंकर शास्त्री व B.S. कल्ला की तिगड़ी ने। इस गीत में पंडित इंद्र ने बहुत अच्छे बोल लिखे हैं और इसकी कुछ बातें लोग आज तक कह रहे हैं, सुनिए है।

0: लखनऊ चलो अब।
1: जी हाँ, मुंबई का पानी तब से बिगड़ा हुआ है। गीता जी स्वभाव की बहुत अच्छी थी और एक खूबसूरत व्यक्तित्व की मालिक थी। वे हमेशा सबकी मदद करती, वे सबके साथ राजी खुशी काम करती। बहुत कम लोग जानते होंगे कि संगीतकार एन दत्ता की पहली फिल्म 1955 की मिलाप नहीं बल्कि 1951 में बनी एक पंजाबी फिल्म बालो थी। इसी फिल्म में एन दत्ता के साथ पहली बार साहिर लुधियानवी ने काम किया था और ये इकलौता मौका था जब साहिर लुधियानवी ने अपनी मातृभाषा पंजाबी में बनी फिल्म के लिए लिखा। इस फिल्म को बम्बई की नव चित्रकार लिमिटेड ने बनाया था। वह इसमें कमल कपूर, अर्जुन, मदनपुरी, चमनपुरी, शकुंतला, रजनी, रानी इत्यादि ने किरदार निभाए थे। गीता जी ने भी इस फिल्म के लिए बहुत खूबसूरती से गाया था। लगता ही नहीं कि पंजाबी उनकी मातृभाषा नहीं है, काश उनसे कई और पंजाबी गीत भी गवाए गए होते। आइए सुने इसी पंजाबी फिल्म का यह खूबसूरत गीत।

लेखिका व डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार हेमंती बैनर्जी ने गीता जी पर एक किताब गीता दत्त काइलाक लिखी है। उन्होंने मुझे बताया था गीता जी जो मूलतः बंगाली जमींदार परिवार से थी, जब बंगाल छोड़ बंबई आईं तो उन्हें बाकी भाषाओं का ज्ञान कम ही था और वे अपने गीत बंगाली में ही लिखकर रिहर्स करती थीं। उनके मिलनसार व्यवहार के कारण वे जल्द ही अन्य बच्चों के साथ वहाँ प्रचलित भाषाएँ थोड़ी बहुत सीख चुकी थीं, जो आगे चलकर उनके काफ़ी काम आया। 40 के दशक के आखिर से वे गुजराती फिल्मों में भी काफ़ी लोकप्रिय हो गई थीं और अविनाश व्यास, अजीत मर्चेंट जैसे दिग्गज उनसे अपनी फिल्मों में गवाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि हिंदी के बाद गीता जी ने सबसे ज़्यादा गाने गुजराती में ही गाए हैं। जो वेबसाइट के लिए गुजराती गीतकोश से चेतन विंची द्वारा निकाली गई लिस्ट के अनुसार कम से कम 92 हैं। 1939 में मशहूर अभिनेत्री नलिनी जयवंत ने गुजराती फिल्म वारसदार में अभिनय किया था और इसमें गीत भी गाए थे। इसी फिल्म के लिए नलिनी जयवंत ने गीता जी के साथ एक दुर्लभ दोगाना भी गाया था, जिसे हम सुनेंगे। इस गीत के बोल व संगीत दोनों अविनाश व्यास जी के हैं। आइए इस गीत का हम सब आनंद लें।

hello, hello, Pablo Sangriwala, Pablo Sangriwala. उन्होंने जाने को पहला वाक्य तो पीवाड़ो, उन्होंने जाने को पहला वाक्य तो पीवाड़ो, आप को संग्रह

वालो होए मराठी के चिरागा बंगाली गोती वालो होए भले तू पंजाबी के मद्रासी मरी मरी सा मामा मरी होए भले तू पंजाबी के मद्रासी डोसा वालो एक जमाना संतानों को साथे साथे जानो एक जमाना संतान

गीता जी भाव गायकी में बहुत पारंगत थी, जिससे वे इस प्रकार से भावों को सुनने वाले तक पहुंचा देती थीं कि शायद ही कोई और गायिका कर पाती हो। इसलिए उन्होंने हर्ष और दुख दोनों भावों वाले कई सैकड़ों गीत गाए। उनकी आवाज में एक आध्यात्मिक तत्व भी था, जिसके चलते उन्होंने जोगन, हर हर महादेव, नागमणि, देवदास, साधना जैसी फिल्मों में कई भजन व आध्यात्मिक गीत भी गाए जो भुलाए नहीं भूलते। इसके ठीक विपरीत उनकी आवाज में एक लचक भी मौजूद थी जो पाश्चात्य संगीत के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इस तरह के गीतों में वे वाकई पायनियर थीं, जिसका अनुसरण बाद में आशा भोसले व अन्य गायिकाओं ने भी करने की कोशिश की। शायद यही वजह रही होगी कि जब हेमंत कुमार बंगाली फिल्मों में पहली बार कैबरे गीत 50 के दशक में लाना चाहते थे, तो उन्होंने गीता जी को ही वे गीत गाने के लिए चुना। तब तक बंगाली फिल्मों में वे सुचित्रा सेन की आवाज़ के तौर पर ज़्यादा जानी जाती थीं, लेकिन फिल्म सुनार होरिन के लिए नमिता सिन्हा पर फिल्माए कैबरे ने तो कमाल ही कर दिया था। आइए बंगाल के मशहूर गीतकार गौरी प्रसन्ना मौजूमदार का लिखा ये खूबसूरत कैबरे गीत गीता जी की आवाज़ में सुने, जो एक खूबसूरत रात का वर्णन है।

दिलचस्प बात है कि मूलतः बंगाली होने के बावजूद उनकी हिंदी फिल्मों की सफलता के चलते कोलकाता में गीता जी को बंबई की गायिका ज़्यादा माना जाता रहा। कुछ मर्तबा तो उन्हें बंगाली फिल्मों में हिंदी गीत गाने के लिए भी बुलाया गया। एक बार गीतकार नक्षत्यालपुरी जी से मेरी बातचीत हुई, तब मैंने उन्हें बंगाली फिल्म के लिए उनके एक लिखे गीत के बारे में पूछा। यह गीत 1959 की बंगाली फिल्म गली ठेके राजपथ के लिए था। नक्श साहब ने मुझे बताया कि फिल्म के प्रोड्यूसर उस समय की डांसिंग सेंसेशन हेलेन को पहली बार एक बंगाली फिल्म नृत्य के लिए एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में बुला रहे थे। हेलेन की सफलता गीता जी के ही गाए हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिंचू से हुई थी और गीता जी को ही उनकी आवाज़ उस दौर में माना जाता था। प्रोड्यूसर के अनुरोध पर ही उन्हें सिचुएशन दी गई और नक्श साहब ने गीत लिखकर दे दिया था। यह गीत हेलेन के साथ साथ प्रसिद्ध बंगाली हीरो उत्तम कुमार पर फिल्माया गया था। इसका संगीत सुधीन दासगुप्ता जी ने दिया था। आइए हम भी यह दुर्लभ गीत सुने, जिसे पहली बार मुझे हमारा फोरम पे इरुम हाशमी जी ने बताया था।

गीता जी ने कई और भाषाओं में भी गाया है, पर उनकी चर्चा कभी और करेंगे। गीता जी ने कई गैर फिल्मी गीत भी गाए हैं जिनमें काफी विविधता है। आइए हम गीता जी का गाया हुआ एक खूबसूरत गैर फिल्मी गीत सुनते चलें, जिसका संगीत दिया था वी बलसारा ने।

0: गीता जी की आवाज इतनी प्यारी थी कि सीधे दिल में घर कर जाती है। ना सिर्फ वे अच्छा गाती थीं, वे एक अच्छी इंसान भी थीं, जो उनकी कला में दिखता है। उनके हुनर बहुत अव्वल दर्जे के थे, जो उनको भगवान की देन थी, जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती। कुछ साल पहले एक कार्यक्रम मैं कर रहा था और उसी सिलसिले में मैंने गाना बिना अनाउंस किए उसका रिकॉर्ड बजाना शुरू कर दिया। गीत के शुरुआत में गीता जी कुछ बोलती हुई सुनाई देती हैं। गीत बजने की देर थी कि सब सुनने वाले परस्पर झूम उठे। ऐसा महसूस हो रहा था कि रिकॉर्ड तो बज रहा है, लेकिन दोनों गायक गायिका हमारे सामने कमरे में बैठे हैं। गीता जी की आवाज़ में एक अजब मखमली अंदाज था, एक सुकून था और अजब नरमी और अनगिनत हुनर थे जो उनके साथ ही चले गए। रफ़ी साहब के साथ ये दो गाना उनके लाजवाब दो गानों में से एक है। आइए हम भी इन दोनों हस्तियों के जादू में खो जाएं। वे दो हस्तियां जो वाकई अमर हैं।
1: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम।

फिल्म मंजिल का ये था ना अनपैरेलल गीत। सचिन दा के संगीत में मजरू साहब के बोलों से सजा यह गीत मेरे बहुत ही पसंदीदा गीतों में से एक है। गीता जी निसंदेह आम इंसान नहीं थी, जरूर कोई शापित गंधर्व ही रही होंगी। कितनी कम उम्र में उन्होंने इतने दुख झेले और आखिर में वे हम सब से सदा के लिए दूर हो गई। 23 नवंबर 2020 के दिन वे 90 साल की हो गई होती। भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर है। चलते चलते हम उनके करियर के एक और पहलू पर चर्चा करते चलें। उस दौर में HMV कई बार वर्जन रिकॉर्ड भी निकालती थी। गीता जी ने भी एक दो मर्तबा वर्जन रिकॉर्ड के लिए गाया था, एक बार परिणीता के लिए और एक बार चोरी चोरी के लिए। आज हम उनका गाया फिल्म परिणीता का वर्जन गीत सुनेंगे। यह एक अनूठा केस होगा कि मूल पुरुष गायक मन्ना डे के गीत को किसी महिला गायक का ने वर्जन रिकॉर्ड के रूप में रिकॉर्ड किया हो। गीता जी का गाया वर्जन भी किसी मायने में मन्ना डे के गीत से कम नहीं है। किसी ने मुझे बताया था कि इस केस में यह गीत फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए पर इस्तेमाल नहीं हुए, पर इसकी पुष्टि किसी स्रोत से नहीं हो पाई है। बहरहाल आइए हम सब सुने यह दुर्लभ वर्जन। हम चलते हैं उनकी यादों को सीने में लिए हुए।

आमतौर पर कई लोग गीता जी को दुख भरे गीतों के लिए स्पेशलिस्ट मानते हैं, पर वे सभी प्रकार के भावों के लिए परफेक्ट वॉइस थी, जिसके लिए उनको उनके चाहने वाले क्वीन ऑफ भाव गायकी भी कहते हैं। 1950 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्यार। उसी का ये प्यारा गीत आपको अब सुनाने वाला हूँ। एस डी बर्मन का संगीत है और राजेंद्र किशन जी ने इस गीत को लिखा था।

गीता जी को इस फानी दुनिया से रुखसत हुए 50 से ज्यादा वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसा खिंचाव था जो छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सुनते हैं उनका ये प्यारा गीत नजरिया फिल्म से। भोला श्रेष्ठा का संगीत है और पीएल संतोषी साहब ने इसे लिखा है।

गीता जी को ट्रिब्यूट का ये सिलसिला आज के लिए यहीं तक कार्यक्रम समाप्त करूंगा हेमंत कुमार जी की कॉम्पोजिशन में गाए इस प्यारे गीत से। राजेंद्र किशन जी ने इसे लिखा है और ये है 1954 की फिल्म शर्त से। ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है।

नमस्ते दोस्तों, आज के इस गाने सुने अनसुने कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस दो फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। 23 नवंबर को गीता दत्त जी की बर्थ एनिवर्सरी है और मीना कपूर जी की डेथ एनिवर्सरी है। ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छा गाती थी, तो ये कार्यक्रम मैं इन दोनों को समर्पित कर रहा हूँ। दोनों की आवाज में कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो गीता जी की आवाज में आपको दो छोटे गीत सुनाऊंगा। मिलन फिल्म से जो 1946 में आई थी, अनिल विश्वास का संगीत है, प्यारे लाल संतोषी के बोल है।

0: दूसरा गीत बहुत इंटरेस्टिंग है, 1957 की फिल्म परवाना से। ये फिल्म में बाद में डाला गया था और फिल्म के ओरिजिनल कंपोजर ख्वाजा खुर्शीद अनवर उस समय लाहौर गए हुए थे। उस समय के माहौल के चलते वे बंबई आ नहीं पा रहे थे और अनिल दा ने इस गीत को कंपोज किया था। इसका रिकॉर्ड नहीं निकला था, सिर्फ फिल्म में था। इस गीत को आप सुनिए और आपको क्या लगता है कौन सिंगर है? मेन सिंगर तो डेफिनेटली राजकुमारी जी है, साथ में कौन है? ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि गीता जी है या मीना कपूर है, आपको क्या लगता है? मुझे तो मीना कपूर जी लगती है।
1: जरा लटका के, जरा बलखा के, जरा मटका के।

इस गीत के कंपोजर की जानकारी खुर्शीद अनवर साहब के भाई सुल्तान साहब ने कई साल पहले दी थी। इंटरेस्टिंगली जब मैंने मीना कपूर जी से इस गीत के बारे में पूछा था तो उन्हें याद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे तो याद नहीं मैंने ऐसा कोई गीत गाया हो। मुझे जो याद है मैंने पहला गीत अनोखा प्यार के लिए गाया था अनिल दा के लिए। खैर जो भी हो गाना तो अच्छा है। कुछ गीतों में तो ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कि दोनों ही तो नहीं है इस गीत में। तो ये अगला गीत जो है फिल्म खेल से है जिसे सजाद हुसैन ने कंपोज किया है। ऑफिशियली तो इसमें गीता दत्त और डीएम दुरानी है पर कभी कभी लोगों को लगता है यार इसमें मीना कपूर जी हैं। खैर सुनते हैं ये गीत। तू कहाँ चला मुख मोड़ के मेरे सीने पे तूने फायर कर दिया।

0: पैसे मेरा कलम दे जा, तेरी ऐसे पैसे, तेरी ऐसे पैसे मेरा कलम दे जा, बन फोड़ के रख दूंगी मैं तेरा भेजा, तेरा भेजा।
1: मत कर हमसे भाई त्रिशोरी, मत कर हमसे भाई, मत कर हमसे भाई त्रिशोरी, मत कर हमसे भाई। अब तो हंस हंस कर पीतेंगे अपने डे और नाइट, अब तो हंस हंस कर

0: की सैर।
1: मंजूर हमें मंजूर हमें मंजूर हमें मंजूर हमें।
2: हमारे सबकॉन्टिनेंट में एक ऐसी और सिंगर है जिनकी आवाज गीता जी से काफी मिलती है, ऐसा लोगों का मानना है वहाँ के, कहाँ के, पाकिस्तान के। ये सिंगर थी नाहिद नियाजी, जिन्होंने कई खूबसूरत गीत गाए हैं। एक इंटरनेट पोस्ट पे उन्होंने बताया था कि झूमर के इस गीत को वे काफी स्पेशल मानती है, क्योंकि ये पहली मर्तबा थी जब उन्होंने माइक्रोफोन से गीत रिकॉर्ड किया। उनको इनकरेज करने के लिए ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने कहा कि नूरजहां अभी गा के गई है इसी माइक्रोफोन से, तुम चिंता मत करो, गा लो। आमतौर पर रिकॉर्डिंग हॉल में अलग से म्यूजिशियंस के साथ गाया करते थे, पर यहाँ माइक्रोफोन के साथ अलग गाया गया पहली बार। नियाजी जी ने एक कान पर तो हेडफोन लगा लिया और दूसरी तरफ से उन्होंने हटा दिया ताकि वे सुन सकें कि कैसा गा रही हैं। तो इस तरीके से ये गीत रिकॉर्ड हुआ था और ये पहला गीत था पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग वाला। सुनते हैं ये गीत जिसे तनवीर नकवी ने लिखा है। आप सुनिए इस गीत को और बताइए कि आपको क्या लगता है कि इनकी आवाज गीता जी से मिलती है कि नहीं।

मीना कपूर जी ने स्वर आलाप मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा था और अपनी दोस्त गीता के बारे में बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म घायल के लिए गाना तेरा किसी पे आए दिल जो मिसिंग है गाया था। इसकी रिहर्सल चल रही थी, शायद ये फिल्म लंबी चली होगी क्योंकि इसके पहले भी रिलीज फिल्म है इन दोनों के डुएट वाली। तो उन्होंने कहा कि रिहर्सल करते करते अचानक मैंने गाना बंद कर दिया और ज्ञान दत्त जी से बंगाली में पूछा, ज्ञान काका आमी की सेकंड तक आई वो। गीता ने हैरान होते हुए क्या तुम बंगाली हो क्या? तो मीना जी ने कहा नहीं, तुम इतनी अच्छी बंगाली कैसे बोल लेती हो? फिर तो उन्होंने बोला बस ऐसे ही। तो इस तरीके से इनकी दोस्ती शुरू हुई। जब तक रिहर्सल पूरी हुई ये बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। इतनी दोस्त बन गई थी कि इस फिल्म के लिए जब गीत रिकॉर्ड होते थे तो मीना कपूर जी की गाड़ी को वापस भेज दिया जाता था और गीता जी इनको अपने साथ बिठा कर उन्हें घर ड्रॉप करने जाती थी या फिर उल्टा कर लेते थे। 1948 की एक फिल्म थी हिप हिप हुर्रे। इसके गीत में मुझे ऐसा लगता है कि गीता जी और मीना कपूर दोनों हैं। हनुमान प्रसाद ने इसका संगीत दिया था। आइए ये प्यारा गीत सुनते हैं। हम जान गए, हम जान गए।

गीता जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छे से जीवन जीती थी। जब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो कई बार मेरे घर आ जाती और बोलती चलो चलो पिकनिक करते हैं। तो मैंने पूछा पिकनिक सिर्फ हम दोनों? तो गीता जी ने कहा नहीं, मैंने सब कोरस लड़कियां रेनू कविता शैलजा सबको बुला लिया है। फिर मैं पूछती बस बस और जाएंगे कहाँ? गीता बोली कहीं भी, पोवई, विहार लेक, नेशनल पार्क बोरीवली। तो मीना जी ने पूछा पर हम खाएंगे कहाँ? गीता जी ने कहा अरे मीनू डार्लिंग, अपने किसी एक लड़के को बोल दो कि वो जो आदमी अमरूद बेच रहा है उसको पकड़ लो, उसको बुला लो। लड़के के इंतजार ना कर हम दोनों दौड़ पड़ी। इतने सारे अमरूद एक साथ देखकर मीना जी की माता जी ने पूछा तुम इतने सारे अमरूदों का करोगी क्या? तो गीता जी ने कहा मासी माँ ये तो हम पिकनिक में खाएंगे। और इसके बाद गीता जी बोली चलो चलो सब गाड़ी में बैठ जाओ, कोई मीना की गाड़ी में कोई मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। दोनों गाड़ियों में सभी लड़कियां बैठ गई। दोनों गाड़ियां शुरू हुई और गीता जी बड़े उत्साह से बोली बोलो दुर्गा माई की जय। सब लड़कियों ने भी यही नारा बोला दुर्गा माई की जाए। तो साथ में जो महाराष्ट्रीय लड़कियां थी उन्होंने बोला कि दुर्गा माई को क्यों सिर्फ याद कर रहे हो, आप गणपति बप्पा कहाँ गया? तो उसके बाद सभी गाने लगी गणपति बप्पा मोरिया पुरछिया वर्षी लव करिया। और इस तरीके से वे अपनी पिकनिक की डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। मीना जी की माता जी और पिताजी ने साथ में हलवा पूरी सब्जी और बहुत सारे आम भेजे थे, वो सब उन्होंने खा लिए और अमरूदों को तो सब भूल ही गए। इस तरीके की लाइवली थी गीता जी। आइए अब सुनते हैं 1950 की फिल्म आधी रात का गीत। गीता जी और मीना कपूर जी की आवाज में हंसराज बहेल ने इसको कंपोज किया है और राजेंद्र किशन ने लिखा है। 78 RPM के दोनों साइड पर यह गीत था और हम दोनों ही साइड एक के बाद एक सुनेंगे।

जिराता, ओ पकड़ो जिराता, मिलना अगर हो तो मिलना वहाँ, मैंने पूछा कहाँ वही चीजों के पास अधीरा तो।

मुझको प्यार से बुला लूंगा, मैं बुला लूंगा पहले ही उसको वहाँ। मैंने पूछा कहाँ, वही खेतों के पास आधी रात को, वही खेतों के पास आधी रात को, वही खेतों के पास आधी रात को। मैंने बालम से पूछा मिलोगे कहाँ, हंसके बोली वहाँ, वही खेतों के पास आधी रात को, वही खेतों के पास आधी रात को।

1950 में एक फिल्म आई थी जलते दीप, जिसका संगीत शार्दुल क्वात्रा ने दिया था और अजीज कश्मीरी ने बोल लिखे थे। इसी का ये दो गाना है गीता रॉय और मीना कपूर की आवाज में, जो मुझे भी बहुत पसंद है। आई मिलने की रात, आइए इस गीत को सुने।

0: मीना जी ने याद करते हुए बताया कि एक बार उनकी घर की घंटी कोई बहुत जोर से बजा रहा था, तो मीना जी दौड़कर अपने घर के दरवाजे को खोलने के लिए गई और देखा कि वहां गीता जी थी। उन्होंने एक तरफ करते हुए कहा, आलसी कब से बेल बजा रही हूँ, एकदम बुद्धू। मैंने उसे उन्हें कहा, फिर तुमने मुझे बुद्धू कहा। फिर सॉरी सॉरी बोलते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें याद है हमें प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करनी है, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि पुराने सिंगिंग आर्टिस्ट के बुरे समय में फंड्स जमा कैसे किए जाएं। और तब एक स्टेज शो किया गया था बॉम्बे के लिबर्टी सिनेमा में, उसकी फोटो भी मिलती है। यहाँ पर एक टैगोर का गीत मधु गंधा भरे लता जी और हेमंत कुमार ने गाया था, और इसके ऊपर डांस गीता जी और मीना जी ने किया था। यहाँ पर ये एक छोटा सा प्ले भी किया गया था, जिसमें तलत जी, जीएम दुरानी, गीता और मीना ने भाग लिया था। आखिरी आइटम था एक मेडली, जिसमें अमीर भाई कर्नाट की, लता मंगेशकर, गीता रॉय, मुकेश, तलत, किशोर, हेमंत कुमार और मीना जी सभी ने गाया था। सबको अपने कुछ पॉपुलर गीतों की कुछ लाइनें फनी फनी गेस्टिकुलेशंस के साथ गानी थी। सब एक स्टेज पर लाइन से खड़े हो गए थे और एक के बाद एक आगे आकर सेंटर स्टेज पर अपना भाग गाते और वापस चले जाते लाइन। अमीर भाई कर्नाट की पहले आई, हाथ में कटारी लेकर, और मार कटारी मार जाना गाया फिल्म शहनाई से। इसके बाद गीता जी एक सफेद साड़ी में बहुत ही दुखी शक्ल बना के गाने आई दो भाई का गीत, मेरा सुंदर सपना बीत गया। इसके बाद मुकेश आए अपनी छाती पीटते हुए और एक माचिस को जलाते हुए, और गाना गाया दिल जलता है तो जलने दे। किशोर ने कुछ योडलिंग की और स्टेज पर जंप किया और फिर लाइन में आ गए। उन दिनों वे काफी नर्वस रहते थे स्टेज पर गाने में। लता मंगेशकर ने आकर महल का गीत आएगा आने वाला गाया। तलत जी एक बार फिर आए और दुखी चेहरा बनाकर उन्होंने आरजू का गीत गाया, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। इसके बाद फिल्म आंखें का गीत बहुत ही फनी मूवमेंट्स के साथ मीना जी ने गाया, मोरी अटरिया पे कागा बोले। तो ये था बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन का किस्सा मीना जी की शब्दों में। मीना जी ने ये भी बताया कि बाजी के आने के कुछ दिन बाद गीता जी उन्हें अपनी कार के उधर ले गई जो पार्क थी। उस कार में से एक जवान बाहर निकला और हंसते हुए मुझे देखा और गीता से पूछा, क्या ये तुम्हारी दोस्त मीना है? मैंने गीता को भौंहें उठाते हुए देखा, उसने सिर्फ मुझे आंख मारी। वो जवान बोला, मैं गुरुदत्त हूँ। मीना जी सिर्फ इतना कह पाई कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद दोनों को जब भी कहीं एक साथ जाना होता तो मीना जी को साथ ले जाते, कभी सिर्फ कॉफी पीने के लिए खंडाला चले जाते तो कभी पोवई लेक पर जाकर फिशिंग करते, और गुरुदत्त का आउटडोर शूटिंग का एक फेवरेट स्पॉट था चाइना क्रीक, वहां भी कई बार जाते थे। और वह दिन भी आया जब गीता जी और गुरुदत्त की शादी हुई। शादी के एक हफ्ता पहले ही मीना जी गीता जी के घर रहने चली गई थी, और उन 7 दिनों में बहुत ही मस्ती की सबने एक साथ, खूब माछेर झोल खाते और रात रात तक गाते, मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे, कई और लोगों के साथ, जिनमें अभिनेत्री स्मृति बिस्वास भी थी। गीता जी शादी में बहुत अच्छी लग रही थी 26 मई 1953 के दिन। चलिए इन किस्सों के बाद फिल्म घायल का एक गीत सुनते हैं, जिसमें गीता जी, मीना कपूर और जीएम दुरानी साहब है। ज्ञान दत्त का संगीत है, सरस्वती कुमार दीपक के बोल है, ओ रानी मैनापति।
1: ಅದನ ಜನಕ ನಭ ಮನಿಮಯ ಸುಲಲಿತ ಹರ ರರ ತೋರೆ ಮಂಜುಲ ಬಚನ ವಿಮೋಹಿತ ವಿಭುತ ನಿಕಾಯ ನಟಲ ತಟಲ ಶಿತಿಂದ್ರಿಗು ಮದ ತಿಲಕ ಸುನೀಲ ಬಾರಿತ ಶ್ರೀಯ ದೂಕಿಲಕ ಸುನೀಲ ಬಾರಿತ ಶ್ರೀಯ ದೂಕಿಲಕ ಸುನೀಲ ಬಾರಿತ ಶ್ರೀಯ ದೂಕಿಲಕ

1963 में मीना जी अनिल दा के साथ बंबई छोड़ दिल्ली चली गईं, क्योंकि वहां उन्हें इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बुलाया था डायरेक्टर इंडियन म्यूजिक ऑल इंडिया रेडियो के तौर पर कार्य करने के लिए। मीना जी को ये चॉइस दी गई कि वे बंबई में ही रहें, क्योंकि उनका प्लेबैक सिंगिंग करियर फिर भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने अनिल दा के साथ दिल्ली जाना प्रेफर किया। वहां एक दिन सुबह अखबार पढ़ा तो हैरान रह गई, उसमें लिखा था गुरुदत्त डेड। ये 1964 की बात है। मीना जी को ये पढ़कर और भी बहुत दुख हुआ कि ये मौत सामान्य नहीं है, और अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये शायद खुदकुशी है। कुछ साल बाद जब गीता जी किसी कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली आई तब मीना जी उनसे मिली और मीना जी उन्हें देखकर हैरान रह गई। वे पुरानी गीता की एक छाया भर, इसके बाद बहुत ही कम गीत गीता जी को गाने के लिए मिल रहे थे और कुछ सालों बाद वे चल बस। मीना जी का कहना था कि मैं उनके नाम के आगे लेट डालना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मेरे लिए वो हमेशा मेरी दोस्त गीता थी जो अब नहीं है। आज भी रेडियो पर उन्हें गाते हुए सुना जा सकता, जाएंगे कहां सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, आत्माएं नहीं मरती और मेरी दोस्त गीता जी की आवाज भी कभी नहीं मरेगी, ऐसा कहना था मीना जी का। फिल्म घायल का अगला गीत सुनते हैं, इसमें भी गीता जी और मीना जी के साथ दुरानी साहब हैं। हमारा कार्यक्रम खत्म करने का समय आने वाला है और इसके बोल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जाने की तैयारियां दैया रे दैया। चलिए सुनते हैं ये गीत ज्ञानदत्त के संगीत में, सरस्वती कुमार दीपक का लिखा हुआ गीत है।

0: गीता जी और मीना जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके गीत आज भी जवान हैं। हमारा मन तो बहलाते ही हैं, उनकी यादों को भी तरोताजा रहते हैं हमारे जहन में। होंगे एक बहुत ही रेयर गैर फिल्मी गीत से। इस गीत के बारे में मुझे महेश सागर जी ने जो ने बताया था, और इस गीत को जफर शाह जी के सौजन्य से मिलने पर हम इसको सुना पा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और आप सुनिए ये लोरी नुमा गीत मीना कपूर जी और गीता दत्त की आवाज में। ये रिकॉर्ड 1952 के आसपास शायद निकला था, जारी लाडली। आप दोनों को ही श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम था मेरी छोटी सी कोशिश। आशा है सबको पसंद आएगा।
1: पीछी नगरिया चली सजनिया, बाबुल का घर छोड़, दो अनजाने बनते साथी, कैसी जीवन मोड़।

हमारे पास अभी भी 2-3 और गीत बजाने का समय है, तो आइए आपको अब सुनाऊं मीना कपूर जी की आवाज में मेरा एक पसंदीदा गीत, जो 1960 की फिल्म मिस्टर सुपरमैन की वापसी से है, जिसे द रिटर्न ऑफ मिस्टर सुपरमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनिल बिस्वास जी का बहुत ही अच्छा म्यूजिक था, गानों में भी और बैकग्राउंड म्यूजिक में भी। इस मस्त गीत को लिखा है मनमोहन साबिर ने। एक तो हूँ मैं हसीन ओ बाबू,

0: और अब गीता दत्त जी की आवाज में आबे हयात फिल्म का ये प्यारा गीत सुनेंगे, जिसे सरदार मलिक ने कंपोज किया है और लिखा है हसरत जयपुरी ने।
1: मेरा दिल, मेरी जान।

और इसी के साथ इस ट्रिब्यूट कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। आखिरी गीत मीना कपूर जी का गाया हुआ मेरे पसंदीदा गीतों में शामिल है। फिल्म है 1954 की अधिकार, अविनाश व्यास जी का संगीत है और इस बेमिसाल गीत को लिखा है नीलकंठ तिवारी ने।

जब कोई साथ नहीं था मेरे, सिर्फ डी साथ था ब्रो। So you're on your own। अपना ख्याल रखो और अपने डी को पास रखो। Peace।

ये मसला ही ऐसा था कि हल ना कर सका, ये मसला ही ऐसा था कि हल ना कर सका। ऐ जिंदगी, मैं तुझको मुकम्मल ना कर सका।

0: आवाज आपका रेडियो आपके शहर आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया। अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ, अबे ढोल पीट ले। गिटार बजा रहे जैक्सन की औलाद। पीपड़ी ने फूक ले, हवानी भर रही के अंदर।

0: लड़की है ना, इनका बस वन ट्रैक माइंड है, शादी शादी शादी शादी. व्हाई शुड आई डू माय ओन बर्बादी, व्हाई शुड आई स्टॉप बीइंग फॉर लादी एंड लूज माय आजादी. इन शॉर्ट, फर्स्ट मैरिज रॉक्स एंड देन इट इज ऑन द बॉक्स.
1: ए वो इन पे पिक्चर आ रही है ना,
2: कौन से?
1: बॉडीगार्ड. उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है.
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
4: तेरी
3: अरे

0: हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही। बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू मां।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज FM पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
7: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
8: Sahara Drums, from Kingston to the Nile. Join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa blended with music of the Caribbean, where heritage speaks volumes in the form of music. Combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive every Sunday at 1 p.m. only on Awaaz 99.8 FM. See you then.